नमस्कार रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम बैलेमी थोप्लो 7 मेगाहर्जबाट म पद्रप्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्मत 2083 साल भाद्र कृष्ण पक्ष सन 2026 सेप्टेम्बर 2 तारीख भाद्र 17 गते बुधबार षष्ठी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पय भरे।

नरायन उस काय सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नहीं परे का घरे मंडा खुन सवाले दुर्योधन समा